जो जो पाथौ नेपाल सम्बन्छ सब पी खुद तसला नवमी थो रेडियो नेपालका अन्य नदी सिरुबी पाके नेपाल भाषा समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उद्योग व्यवसाय त लगानी याय गुलकस देखे त व आर्थिक हिसाबमा दिशी लाकृत निजी लगाय प्रतिनिधि नापा सल अभ्याका दिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मिग जुगु सल सन्देय आर्थिक लगाय त न्याके त व दिशी लाकेगु कथम उद्योग व्यवसाय त लगानी लकस देखे गु नीतिगत प्रक्रिया कथम लेना चोङ्गु पङ्ग चिकेगु निजी लगाय मनोबल थकाय गु व लजगा बोलङ केगु उत्पादन उपोकेगु विशेष सल याना दिगु थोए लसता प्रधानमन्त्री शाह देय आर्थिक विकास लगानी तब्या केगु लजका बोलङकेगु उत्पादन अपलन यायगु निजी लागा सरकारिया महत्व जाको साझेदार जुगु नेथना दिसे उद्योगिक व्यवसाय फया चोङ्गु व्यावहारिक हात्या नहङ्के त सरकार तयार जुयागु धया दिल वेकल उद्योग वो निजी लागा मैत्री लकस देखेगु नीति मागु नीतिगत कानुनी व प्रशासनिक सुधार यता थ्या बिया निज्या केगु वचन नपा पङ्का दिल प्रधानमन्त्री शाह आर्थिक सुधार या अभियान सरकार निजी लागा नपा सहकार यासे निज्यागु ध्वाथ्वीका दिगु खसा वेकल सलस वेगु सुझ यता दु नुग्ल निसे सोचे यायगु व स्वपुदुगु निकाय पाके मजी मगागु सहजीकरण व भिङ्केगु ज्या निज्यागु बचाउ पङ्का दिल अध्ययना सलस निजी लगाय प्रतिनिधि पिस उद्योग व्यवसाय प्रबन्धन लगानी त व्याकेगु नीतिगत स्थिरता व सेवा प्रवासन सरलता नापा सरकारी निजी लगा दति नियमित व लिचो पिहा वैगु खलाबला मजी मगागु विशेष सुझाव ब्यादिगु ख सरकार गोविन्द बहादुर कार्कियता नेपाल सरकारका मुख्य सचिव पद नियुक्त यागुदु मन्त्री परिषदका मेगचुङ्गु बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालय सचिव कार्कियता मुख्य सचिव संयुक्त यागु कोचिनागु बैठक लिपा सरकारका प्रवक्ता नपाङ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी ब्यादिगु ख अध्ययन मन्त्री परिषद बैठकमा गेट अस्पताल कैलाली याता शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल कथा न्याकेता स्वीकृति हागुदु अध्ययन बैठकमा ये सैनिक विकास प्राधिकरण या विकास आयुक्त ये या सुरक्षाकेत नियुक्त यायगु विदेशी शैक्षिक ज्याजो याकेगु नियम नियमावली 2083 व शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण व तयारी कक्षा सञ्चालन व व्यवस्थापन नियमावली 2083 स्वीकृत यायगु नापाया कोचिना त जुगु शिक्षा मन्त्री पोखरेलमा जानकारी ब्यादिगु ख प्रतिनिधि सभा मिगय बैठक नेपाल राष्ट्र बैंक स्वकगु संशोधन विधेयक 2083 व पर्यटन विधेयक 2082 यता दफावार सहलय नीति स्वपुदुगु समिति छोगुदु बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेन हेवयादिगु नेपाल राष्ट्र बैंक स्वकगु संशोधन विधेयक सांस्कृतिक पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल हेवयादिगु पर्यटन विधेयक सभासँग स्वीकृति आगु ख बैठकका प्रतिनिधि सभा सचिव प्रकाश अधिकारी विनियोजन विधेयक 2083 विशेष सभास वोगो हसना न्याङ्कादि गुख बैठक सभामुख डोल प्रसाद अर्याल नेकपा एमाले सांसद राजेन्द्र राईया नोचु संसदीय रेकर्डसँग चिकेता उजौँ ब्यादि गुदु नेकपा एमाले सांसद राजेन्द्र राईया नोचु यता कया सभामुख अर्याल कुङ खिना दिसे मर्यादा के चोना नुवा त उज बिया दिगु हो राईया त लिस कया नुवा के मबी धुङ्कानी एमाले सांसद त्यसन दना विरोध यागु ख सभामुख अर्याल सांसद त्यसन नुवाइगु झो सभामुख अपमान यागु याना भाषा छ गोलिता कया सभाया ध्यान कोसाला दिगु खसा सांसद राई अभिव्यक्ति या त कया रासोपाय सांसद ज्वाला सङ्ग्रहला कुङखिना दिसे सांसद राई या नोचु संसद रेकर्सन चिकेता माग्याना दिगु ख प्रतिनिधि सभाया बैठके नापा मिगन प्रतिपक्षी दल या सांसद त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या अभिव्यक्ति भिङ्केता माग यासे दना विरोध यागु ख प्रतिपक्षी दल या सांसद त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारत सीमा या विशेष बिहादेगु नोचु या त कया भिङ्केता माग लिसकया विरोध यागु ख अध्ययन नेकपा एमाले सांसद राजेन्द्र राई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद परशुराम तामाङ श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्कराज राई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद ताहिर अली भाट प्रधानमन्त्री शाह संसदीय जिम्मेवार देखे मागुली बबिया दिगुदुस बैठक विशेषले नेकपा एमाले सांसद दलले उपनेता पद्म कुमारी अर्याल संविधान संशोधन यागु खसान संविधान आधारभूत विषय यता चुएक मयागुली
अडान दयाहे चोङ्गु धया दिगु खस सामसतेसन तु किसान या ता इलालिसिन थगु उत्पादन मी ढुङ्कानिका दैगु ढेबाया भुक्तानीका मखङ्गु विशेष त सरकारी ध्यान कोसाला दिगु दुसा थोएदेथि सामसतेसन बस्तीसन चिका होल्डिङ सेन्टरे तया तपि सुकुम्बासी तेस ने तोने मखङ्गु धका ख वया चोङ्गु विशेष सरकार नापा लिस फोङ्गु नापा होल्डिङ सेन्टर तया तपि सुकुम्बासी त्यता अनस चिका अलपत्र खे त्यता सोगु धासे कुङखिङ्गुदु थे दि झिङ्यागु मिनेटिया नीति दिका तगु प्रतिनिधि सभा या निकगु बैठक सुच पाखे थौ या नीति लिच्छागु ख विशेष कारण बस थागु इले बैठक चोने मफे व सभामुख डोल प्रसाद अरिया ल थौ सुतेसिया झिन्छता इले चोनेगु याना यी कोचिना दिगु संघीय संसद सचिवालय महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डे पिथना दिगु सूचना तगुर्दु प्रतिनिधि सभा बैठक थौ सुथे झिन्छता इले चोनिगु गोसादु भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धनुषाया राम जानकी ड्योग नापा जनकपुर लाका कथन दुगु गुठी जग्गा संरक्षण व अतिक्रमण चिका गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय या गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरे या समय जगते गुमा सदस्य कार्यान्वयन समिति निसोङगुदु समिति या त पेखेरा जनकपुर लाका कथन दुगु पुखु पुखु या सिथे राम जानकी ड्योग नापा या प्रमुख ड्योग व गुठी जग्गा दुगु अतिक्रमण चिका झिङ्यानु दुने प्रगति धल मन्त्रालय दूत वित्त मन्त्रालय या त इनापियागु ख प्रतिनिधि सभा कथा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति या बैठक संसद सुकुम्बासी तेगु मानव अधिकार संरक्षण व संक्रमणकाले न्याय तालिचो लाके मागुली बबिया दिगुदु समिति मिगचुङ्गु बैठक सांसद सुकुम्बासी तेगु मागु कथा या व्यवस्थापन बाल विवाह न्यूनीकरण यौनजन्य हिंसा या पीडित यता न्याय या पहुँच सुनिश्चित या त नीतिगत सुधार मागुली बबिगुदु छ बैठक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर मानव अधिकार संरचना नीति आयोग या त वित्तीय स्वायत्तता मानव अधिकार नापा एन पारदर्शिता सरकारी हस्तक्षेप न्यूनीकरण व दुर्गम लागाया पूर्वाधार विकास मागुली बब्यादिल अथियाना बैठक आयोगया दुज तेसम विदेशी दुपी श्रमिक विद्यार्थी तेगु मानव अधिकार संरचना सुरक्षा विशेष ध्यान बी मागुली सरकारी ध्यानको सल्लाह दिल प्रतिनिधि सभा कथन दुगु शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधि 2081 दथि विधि विज्ञान प्रयोगशाला या सञ्चालक समिति या बैठक व कोचिना या विशेषण सल जुगुदु समिति मेघचुङ्गु बैठक राष्ट्रिय सभासँग पारित जुया प्रतिवेदन नापा वोगु विधेयक या दफा साथे प्रयोगशाला सञ्चालक समिति अध्यक्ष भोटी कासा मकासा सदस्य तेसन थामा मुनु बैठक अध्यक्षता यैगु व्यवस्था चिका समिति थकालीमा मुनु बैठक अध्यक्षता या फैगु व्यवस्था ते त सांसद तेसन संशोधन प्रस्ताव दुत बिगुदु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निजामती कर्मचारी अस्पताल नुगु बानेश्वरी दुगु फार्मेसी युनिट इन्चार्ज व फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुङ्गाना नापा च्यामा विरुद्ध निगु करोड गुई छगु लाख सुई पेदो ठेवासी उपभ्रष्टाचार यागु दोपस मुद्दा दायर यागुदु आयोग अस्पताल फार्मेसी अधिकृत ढुङ्गाना नापा फार्मेसी सहायक लवेन्द्र कुमार वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पन्त फार्मेसी सहायक दीपक सापकोटा स्टोर किपर व वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल व शर्मिला श्रेष्ठ फार्मेसी सहायक केशव राज नेउपाने व सन्दीप तिवारी विरुद्ध मुद्दा दायर यानागु आयोगका प्रवक्ता सुरेश नेउपाने पिथना दिगु विज्ञप्ति सनेथना तगुदु विशेष अदालत सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा नेकपा एमाले नोकु नापा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल या त न्यानु हिरासते कुना अनुसन्धान न्याय त अनुमति ल लागुदु अदालत न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेल र विदुर कोइराला इजालासम हिग पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल या त न्यानु हिरासते कुना अनुसन्धान न्याय त थो अनुमति बिगु ख राहदानी विभाग राहदानी सेवा या त नुगु प्रणाली हिका माइग्रेसन या त सङ्गुली निनु राहदानी सेवा बन्द जुइगु सूचना बिगुदु विभाग हिग पिथ सूचना कथा आ न्याना चोङ्गु प्रणाली स नुगु प्रणाली सेवा स्थानान्तरण याइगु जुगुले कने व कंस राहदानी सेवा बन्द या टेङ्गु ख राहदानी सेवा बन्द जुसाना देके धुङ्कु राहदानी दशा इनेगु विभाग सूचना बिगुदु
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल रेडियो नेपाल प्रसारण जुया वया चङ्गु रेडियो ज्याचो कानुनका कुरा अझ यी कथ लिचो लाइगु देखेता बबिगुदु रेडियो नेपालले मिग गोसागु कानुनका कुरा रेडियो ज्याचो या समीक्षा ज्याचोले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सचिव परा स्वर ढुङ्गाना सकल मनु त्यता कानुनी विशेषण अफुगु कथन जानकारी बिगु थो ज्याजो दसु कथन पलिस्ताजुगु धया दिला ज्याचोले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौटा राज्य देखगु कानुन या विशेष मनु तक अफुगु कथन जानकारी थ्याङ्केता संचार माध्यम या ता कथन ज्या यैगु उक्या नीति रेडियो नेपाल हे बानलागु विकल्प जुगु धया दिलासा कानुन मन्त्रालय सहसचिव हुम बहादुर केसी व अरुणा जोशी मनु तेगु नित्य जीवने मजी मगाको कानुन या विशेष जानकारी बिगु आज यहाँगु रेडियो ज्याजो कानुनका कुरा बानलागु धया दिलासा सूचना तथा संचार मन्त्रालय सहसचिव उदय बहादुर राणा सकल पक्ष यता कघना यी कथ ज्याजो निहाकेता ब बिया दिलासा रेडियो नेपाल समाचार महाशाखा प्रमुख पवन प्याकुरेल व व्यापार महाशाखा प्रमुख गोपाल थापा कानुन या अज्ञानता अक्षम जुई गुदासे नागरिक तक ठेङ्के गु व राज्य देखगु कानुन या विशेष नागरिक त्यता जानकारी बिगु आज ज्याचो प्रसारण जुया चोङ्गु जानकारी बिया दिला ताइलन सि ये या बल्कु लागा सर्वसाधारण व मनु त्यता जबरजस्ती बसे तेगु सामान झोला सालिगु दुख बिया चोपी झिङ्यामा सित मिग प्रहरी जोङ्गु दु महामुदुगु कथन दुख व सास्ती बिगु धासे न्यासी जुपी मनु तेगु खया लिधासा ये सोनिग अपराध अनुसन्धान कार्यालय सङ्खटी जुपी प्रहरी पुच संहिता जोनागु कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी बिया दिगु ख बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानसा छिमा बिचौलिया या त जोङ्गु दु प्रतिष्ठाने वासा नीति वैपी बिरामी या त ठिटी निजी मेडिकल सा अपुइको कथ वासा क्या दैगु तोह चिना वासा बिगु धासे लोबे लाका कमिसन या कागु दोपास उमिता जोनागु जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरिया प्रहरी प्रमुख केशव कुमार थेवे जानकारी बियादिगु ख सिंह दरबार दुनिया सरकारी कार्यालय शारीरिक रूपमा अशक्त थकालीपी मनु व अपाङ्गता जुपी सेवाग्राही व सरकारी कर्मचारी त्यता अफुइगु कथा वे वनेगु नीति व्हील चेयर व सहजकर्ता व्यवस्था यागुदु मिग सेवा उलेजा यासे मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल अव निश सार्वजनिक सेवा कायता वेपी सेवाग्राही व कार्यालय वे वनेपी कर्मचारी त्यसमा शारीरिक अवस्था हुने वे वने त हठ्या फया चुने मुवालिगु थया दिगुदु आदेश पिने बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान नापा जुगु युद्ध विराम हङ्गु घोषणा यासे तेरा नापा मेगु छुन सम्झौता यागु इच्छा मधु धया दिगुदु अमेरिकी सेना इराने चाचा व्यापक आक्रमण या धुम्कानी उक्या लिसकथ इरान खाडी लागा दुगु अमेरिकी सैन्य लिधंस या त लक्षित यान आक्रमण यानागु दाबी सार्वजनिक जुगु इले राष्ट्रपति ट्रम्प या थो नोचु बिहा हो गुख टर्की राजधानी अङ्कारा यानाचङ्गु नाटो शिखर सम्मेलन झोले संसार कमी नापा खलाबला ब्याका दिसे ट्रम्प इरान नापा युद्ध विराम आवनिसे मयागु विचार वो गुकना दिलासा वेक्ला इरानी नेतृत्व दथी कुखिना दिसे तेरा नापा आ वार्ता छुन ख जा मधुगु बिचा पङ्का दिगु ख ट्रम्प जुन 17 वासिङटन व तेरान दति जुगु युद्ध विराम नापाया सहमति या त इरान इले इले महामधुगु कथन हबोगु दोपन नापा बिया दिगु दु ट्रम्प या युद्ध विराम नङ्गु घोषणा निपा अन्तर्राष्ट्रिय बजारे चिकन या मु अथे न्यागु प्रतिशत उपया सङ्गु दु आ मौसम जानकारी थौ बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागया छुन थासे व मध्य प्रदेश नापा कोशी प्रदेश या तराई लागया मो थासे मल नापा वाविगु सम्भावना कुबिगुदु बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लागाया चगुनीगु थासे आफ्नो वाविगु सम्भावना

0: लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्रीसम्म त 2862 तालु बेलबोलाला छेपाङी चुइसे ब्ली विक्रमसम्म 2083 साल असारलाला नि चुइसे घा नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्दा तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला ना सूर्य मोक्तान काइब्लुन बालेन्द्र साहसै निर्माण थुम्ला समस्या त छैन लबा भौतिक पूर्वाधार र विकास लबा लगानी लबरी खाम्बा वातावरण शोभा थिएन नोर्थुम्ला ज्याबसोबारी खाम्तोबा ताम्रे तिनी निर्माण छोङखेन काथेथेन काठुइला शुभम्बला नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घलाई दानपोका दिथेन काठुइला सुबान काइब्रुन साहसे निर्माण थुम हिल्ला नोर्थुम द ज्याब सुबारी खाम्बा गेपिनमा थिएन पूर्वाधार सुबारी खाम्बा महत्त्वपूर्ण आधार यिनमा चाहिँ चुथुम्ला समस्या त छैन लबारी सरकार चाहिँ बाङ्ला सेलम्बला विशेष संक्षेप हिँड्न काइब्रुन साहसे निर्माण छुङ्दा मर्यादित पारदर्शी जिम्मेवार थिएन परिणाम ब्राङ्बा सुबारी विकास निर्माणलाई गेद विषाम तोक्ला दुई ऋण जिन्न लसिपिनमारी मोइजेन लसिपम्बला काठुरी नेपाल निर्माण व्यवसाय से निर्माण थुम से नाबन खातोबा टाङ्गाला म्याद काप्पा ठेक्का व्यवस्थापन लदोबा दुई ऋण आयोजना कार्यान्वयन लदोबा साई समायोजन लदोबा बैङ्किङ थिएन लगानी सम्बन्धी चुनौती निर्माण उद्योग द चलायमान सुबारी सरकार थिएन निजी थुम डिक्से गेलाबारी खाम्दोला विषय सङ्गम्बला सरकार चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई तिनी लच्ची साङ्री काइब्लोन बालेन्द्र शाह गोबाङरी शोभा छार सरकार चाहिँ ग्यार्जुगिक रे नाङ्री लबारी खाम्बा उपलब्धि गतिलाई फेरि जानकारी दोन्छ बम्बला सरकारलाई सुङ्गमन स्यार्थेन क्लाङबा ब्लोन सस्मित पोखरेल चाहिँ सरकार चाहिँ ग्यार्जुगिक रे नाङ्री लाबा प्रगतिलाई फेरि चिसाङदा जानकारी दोन्छ हिँड्न चुनन असारलाला घिचुई कुनु सुङ्गमन पोखरेल चाहिँ साङ्गिर बनुवाल सङ्घ चाहिँ सरकार चाहिँ ग्यार्जुगिक रे नाङ्री लाबारी खाम्बा उपलब्धिलाई फेरि नेपाली हिलबाट जानकारी दोन्छ बम्बा प्रतिनिधि सभालाई तिनी लन्ची साङ्री सुङ्गबन डोलप्रसाद अरियाल चाहिँ संसदरी विरोध लबा तरिका पोबारी प्रतिपक्षी दल गदेता मोइजन लासुबम्बला चिसाङ टिबाला पायानुन प्रतिपक्षी दललाई सांसद गदे रेसी विरोध लबारी वाङमा लेछा सुङ्गबन अरियाल चाहिँ रेङमा दुई एन्से गोर्गिग्नुन ताम्री प्रतिपक्षी दल गदे से ध्यान छेङ्ने लबन खाबासे गोर्गिग्नुन ताम हिन्साम मेन्दु गिक्से जेकेन ताम थान्से पिनमारी मोइजन लासुबम्बा काइब्लोन बालेन्द्र साहसे सुङ्बा मुरला तामक्योनबारी माग्लाबन प्रतिपक्षी दललाई सांसद गर्दैछ विरोध लाबन खापमला चुनुन ताङ्री सुङ्बोन अरियाल चाहिँ विपक्षी दल ग्याम मेन्दुकिक्से चेकेन दाम थानबारी मोहिजेन लाबन नेपाली काङ्ग्रेसलाई सांसद हरिना देवी कामित दुई दोन्सी बम्बा मेन्दुकिक्दा चेकेन ताम थानबारी पिन्बा ताम्रे प्रतिपक्षी दल गर्दै सहमत आतावाली छ सुङ्बोन अरियाल चाहिँ संसदरी विरोध लाबा तरिका पोबारी मोहिजेन लसुपहिन्न चुनाउ लसी प्रतिनिधि सभालाई तिनी लच्ची साङ्री सांसद स्यार्थेन लुइथुम द ज्याब सुबारी सानाम बोल्न समस्या त छैन होला सिपिनमारी थिएन हिउलबाला लुइ द ज्याब सो सिपिनमारी सरकारलाई ध्यान छेङ्ने लाबम्बला सांसद गर्दैछ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग से सिफारिस लाबा प्रतिवेदन आतेनमा विवाह आयोगलाई अवमूल्यन थिएन अब हेलना लाबा मुखुल्ला प्रतिबद्धता तेनमारी कार्यान्वयन लाबारी थिएन सुकुम्बा सिधा टिपग्ला ग्याम ताप्सी होल्डिङ सेन्टर थान्बाली छानुन् तेसी ताप विवा ज्याबा आइनबासै सुकुम्बा सिधा व्यवस्थापन लसिपिनमारी सांसद गर्दैछ सरकारदा मागला बम्बला चुनुन गुङरी प्रतिनिधि सभारी निभा जेठलालाई चुइसिङ स्कुनु ताबा घटनालाई जाँच बुझलाबारी सभा समिति चाहिँ सुङ्गोन से याङबा विशेष याङतामला पायानुन प्रयोगलाबारी सुझाव पिन बम्बला समिति चाहिँ पाङमारिन आताबा थिएन मिदा थिबा खाल्ला छिक प्रयोगलासम्म नियमावलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन लबन थेरङमा तान्दा संसदलाई अभिलेख क्याम ब्याङमा हिँड्छे चिसाङ्याम फिर्कप्तेबारी खाम्बा धोनालाई ठिम्दा सुङ्गोन से कार्यान्वयन लबारी खाम्सेला मलाई बिसिनन् समिति से सुझाव पिन्पा मलाई चुरानुलासी प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङ्री राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक 2083 पेस लबम्बला सभारी काइब्लोन बालेन्द्र शाहलाई तर्फ ग्याम ठिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लोन सविता गौतम से विधेयक थान्छु भइन्न चुरानुलासी तिनीलाई चिसाङ्री महान्यायाधिवक्ता गेदिम थिएन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिङ्गिकलाई प्रतिवेदन पेस लबम्बला प्रतिनिधि सभा ग्याम साङ्गुला छ्याम्रे खाबा नोर विधेयक 2083 दा तिनीलाई राष्ट्रिय सभालाई चिसाङ्री सर्वसम्मति से पारित लाबम्बला नोरबन डाक्टर सोडिम वागले से सवारी थान्सिबा नोर विधेयक 2083 पारित लासै प्रतिनिधि सभारी पुइदोजी विषय थान्सिबा प्रस्ताव दा दफवार काठुई लाबली छ सर्वसम्मति से पारित लाबहिन्न चिसाङ्री सांसद गति सिंह प्रश्नलाई जवाब दोन्सिबा नोरबन वागले से सरकार से विकास निर्माण लाबारे आपिनमा ठिमला गारी छा ठिम सोसी गेलाबा प्रक्रिया तिसी जिनमा मुला विषय संक्षेप बम्बला चिसाङ्री सांसद गर्दैछ कर व्यवस्थापन लाभ थिएन कार्यान्वयन लाभ ताम्दा सरकार चाहिँ स्पष्ट लादोबा बिजुली रि स्यान कर का परे अथवा स्यारी लागेलाबा सोम प्रतिशत कर या सिकिनमारी माग्ला बम्बा चुनाउ लसी राष्ट्रिय सभालाई तिनीलाई चिसाङ चाहिँ युल्ला छे दुई बा विधेयक 2083 दा स्वीकृत लाबम्बला सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभालाई सुङ्गुन डोलप्रसाद अरियाल धा नेपाल दा भारतलाई ग्लेबोन नवीन श्रीवास्तव से रूप्ता से लेङमेला शिवमला रूप्तामा सुङ्गुन अरियाल से छार सरकार से क्योलोलो ग्याजगिक रे छोसी जिन्माला जानकारी दुन शिवान निवनिर्वाचनलाई दुईरी भारत सरकार से लबारुला फेरि थुजे छे दुन शिवमला ग्लेबोन श्रीवास्तव से भारतलाई लोकसभालाई सुङ्गुन बिरला नेपाल कोरबारी सेमोबा ताम्ला जानकारी दुन शिवान नेपाललाई सुङ्गुन थेन सांसद गजेदा भारतलाई संसदीय अभ्यास अध्ययन नभरी थेन श्याबारी न्यू साङ दुन शिवमला चुनन गुगरी लुइथेन चाबसे स्वच्छता ब्लोन निशा मेहता दा नेपाल दा नर्वेला ग्लेबोन ग्याग्नी म्यासेसे रूप्ता से लिङमला शिवमला रूप्तामा नेपाल थिएन नर्वेला गुर्मी हिर्पक्षी अप्रेलमा थिएन लुइथुम रिलाबन खाबा रोधा अझ लिनेलाबा ताम्रे काठुई लाबुमला विषय ब्लोन खाङसे पाङबमला ऊर्जा किनोर थिएन सिन्चाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से नेपाल से स्यान ह्युल थिएन ऊर्जा कनेक्टिभिटी ग्याम ऊर्जा छोङला बरी न्याङ्गोर ह्युल थिएन डेक्सी गेलाबन खाबमला विशेष संक्षेपमला ब्लोन श्रेष्ठ से लो एसियारी ऊर्जा थुम्ला ब्रेलबा सम्बन्धी काठुई घेखोरी लेङमा थान्छिवान स्यान ह्युल्ला प्रसारण लाइन ग्याम नेपाल से भारत थिएन बङ्गलादेश री बिजुली पुइबान खापमला विषय सुङ्सु बहिन्ना नेपाल से सन् 2035 दोनामा तोङ निचु सेब्रे ग्यार्जाङा मेगावट छेमा तल जलविद्युत आयोजना सङ्से ङ्याङ्गोर ह्युल्का देरी बिजुली चुङबा दोखाङला छ्याम्री तान्दे गेलाबान खापमला विषय नन् ब्लोन श्रेष्ठ से सुङ्सु बमला महालेखा नियन्त्रक गेदिम्से स्थानीय तहदा नोर्दिङला टाङ्गाला कारोबारलाई बढी प्रयोगलाई बनेका भए स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन टिम तिनी मुना हिंसे ढुङ्सी पिन्सेला तापमला र महालेखा नियन्त्रकको यज्ञ प्रसाद ढकाल चाहिँ नोर्गे विधि थिएन वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077लाई नियम सुम्चुइला उपनियम गीका अनुसार नोर्दिङ थुम्बा बिमा ङाछा अथवा च्याङनारी नन् सातकी ङाछन टाङ्गा किन्बा पिन्माला सि जिन्दोबा ठिम अनुसार चुठिम ढुङ्गारी छे बहिन्न विषय सुगमला याम्बु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी गेदिम्से लाख घिसे तोङ डुचे गिक्मेमा लामा सवारी सेङमाका देशे फादोबा जरिवानालाई टाङ्गा फाबा आरबिसी पाङबमला गेदिम्ला अनुसार फादोबा जरिवाना आफाबा सवारी साधनका देता यातायात व्यवस्था गेदिम्से पिनमान खापा सेवाका दे आफिन्सेला तापमला थेराङबा जरिवाना आफाबा ड्राइभरका देशे चार सवारी साधन ग्लुमा सवारी साधन चुङसे नामसारी लामा लाइसेन्स नवीकरण लामा थिएन यातायात गेदिम्से पिनमान खापा स्यान सेवाका दे पिन्सेला आरबिसी पाङबहिन्ना रेङ्गमा दुई दोना थेरङमा ड्राइभरका देशै जरिवाना आफा वाली छ ट्राफिक प्रहरी से यातायात गेदिमले पूर्व विवरणलाई आधारले खाजीवनन सेवा आपिनमा प्रक्रिया तिसी जिन्मा मला विषय पाङबमला जरिवाना फादोबा टाङ्गा आफा दे दोना गेदिम से पिनमान खाबा लोलो लोलो सेवा पिन्सेला आरबिसी एसपी नरेश राज सुविधि से सुङबमला ओसेम रेदाङसेन नाम ग्रेन्ताइबाला ताइबन लाबा लिच्छ खाबा दुई से मेची राजमार्ग इलामला माइस्योङ राजदुवाली सडक ग्याम ढुङबमला सडक ग्याम दुई खाबाला खाबन लाबा लिच्छ ग्लाग्लारी नोङबा थिन भा सप्ताह विमान सवारी साधन छेङमारी आपिन्ना काबमला चुरानुला से इलाम थिन झापा थुइबा कचेना कञ्चनजङ्घा द्रुत मार्ग पुवा सुङरी मुबा डाइभर्सन डी दुई खाबासे थेरिनोन सवारी साधन सेङबारी आखामना टिपमला सडक डिभिजन गेदिम इलामला अनुसार पुवा सुङ थिएन जोगमाई सुङरी झाङसेला बिबा ब्रेलिबी चाम भारत ग्याम दान्देदोना बाबारे आखाम बसे थेर्ला समस्या त छाङनाला बारी आखामना टिपमला चुनन साङ्ग्युर गदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्ग्युर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मल्लासिगो लसो फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल नेपालको समावेशी आवाज रेडियो नेपाल सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अबलाई हामी करिब 5:45 लोक दोहोरी गीतहरू सुनाउँदैछौ पहिलो गीत स्वरूपराज आचार्य र लक्ष्मी मल्लको स्वर कृष्ण केसीको शब्द सिर्जनामा लय चाहिँ श्रीकृष्ण बम्मल

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालक लेल फ्रान्सके राजदूत भर्जिनी कार्टभेस आई उपराष्ट्रपतिके कार्यालयमे शिष्टाचार भेटवार्ता कयलनि अछि। एहि अवसर पर हुनका सबके बीच नेपाल फ्रान्स सम्बन्धके विभिन्न आयामके सम्बन्धमे विचार विमर्श भेल उपराष्ट्रपतिके सचिवालय जनौलक अछि। उपराष्ट्रपति यादव नेपाल आ फ्रान्स बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भेल एम्हर दू देश बीचके पारस्परिक सम्मान सहयोग आ मैत्रीमे आधारित सम्बन्ध आर उन्नत भेल बतौलनि अछि। ओ फ्रांसेली क्रान्तिके आधारभूत मूल्य सब स्वतन्त्रता समानता आ भ्रातृत्वसँ नेपालके राजनीतिक आन्दोलनके सेहो प्रेरित करैत आयल चर्च कयलनि। फ्रान्स यूरोपेली संघ मार्फत नेपालके प्रदान करैत आयल सहयोगके लेल उपराष्ट्रपति यादव धन्यवाद ज्ञापन करैत दू देश बीचके सम्बन्ध आबयवला दिनमे आर प्रगाढ़ होइत जायत से विश्वास व्यक्त कयलनि। संघीय उपराष्ट्रपति यादव फ्रांस के आबयवला राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राजदूत कार्टिवेल मार्फत फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यानुल मैक्रो आ फ्रांसेली जनता के सुख शांति आ समृद्धि के कामना कयलनि। राजदूत भर्जिनी कार्टिवेल अपन कार्यकाल में फ्रांस आ नेपाल बीच के संबंध के आर सुदृढ़ बनेबाक प्रयास भेल बतौने छलथि। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बालेंद्र शाह के अध्यक्षता में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के 26वीं बैठक आई सम्पन्न भेल अछि। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में आई भेल बैठक से चिकित्सा शिक्षा आयोग के कोष संचालन कार्यविधि 2083 स्वीकृत कलक अछि। बैठक में आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र खत्री कार्यविधि स्वीकृत करबाक संबंध में प्रस्ताव पेश कयने छलथि। एहि बैठक में स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता आ शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल सह अध्यक्षता कयने छलथि। प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 के आजुक राष्ट्रसभा के बैठक से सर्वसम्मति से पारित कलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले सभा में प्रस्तुत कयल गेल आर्थिक विधेयक 2083 पारित कर प्रतिनिधि सभा में फिरता पठायल जा कहकर रखने प्रस्ताव दफावार विचार विमर्श पश्चात बिना सुझाव सभा सर्वसम्मति से पारित कलक अछि। बैठक में सांसद उठौने प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री वागले सरकार विकास निर्माण में बाधक मानल गेल बहुतो ऐन सब में व्यापक सुधार करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ौने बतौने छलथि। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक से स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करयवला विधेयक 2083 सर्वसम्मति से पारित भेल अछि। बैठक में स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ई विधेयक पारित काल जाके के प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। विचार विमर्श में सदस्य वासुदेव घिमिरे भाग लैत अपना सबके संशोधन के स्वीकार कयने प्रति सरकार के धन्यवाद दिलनि। अध्यादेश के विस्थापन कर आनल गेल ई विधेयक प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त भेल अछि। सभा विधान व्यवस्थापन समिति के संशोधन सहित के प्रतिवेदन के स्वीकार कयने अछि। ई विधेयक आप प्रतिनिधि सभा में फिरता जात। सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल समय सीमा के चाप के बीच छोट अवधि में छलफल पश्चात आई अध्यादेश के प्रतिनिधि प्रतिस्थापन संबंधी 4 आ बजट संबंधी आश्रय दूटा विधेयक पारित कर सकल प्रति संबंधित मंत्री समिति के सदस्य आ सब सदस्य प्रति आभार व्यक्त कयलनि। सभा के दोसर बैठक अखार 26 गते शुक्र दिन 1:15 में बैसत। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले वर्तमान सरकार प्रतिफल देवयवला छाम में मात्र लगानी करत से बतौलनि अछि। आई बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक में भेल राष्ट्रीय ऋण उठावयवला विधेयक 2083 ऊपर के विचार विमर्श में के क्रम में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में ई बात बतौलनि अछि। ओ बीतल समय अनुत्पादक क्षेत्र में ऋणी लगानी कला पर सार्वजनिक ऋण के भार बढ़ल बतौलनि। बीतल 7-8 वर्ष में वार्षिक औसत 18% के दर से बढ़ल हुनकर कहब छन्हि। ओ आवश्यक आ प्रतिबलमुखी क्षेत्र में ऋण लेबाक चाही बतौने छलथि। ऋण लेब अपने में गलत नहीं भेल स्पष्ट करैत ओ उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी के लेल लेल गेल ऋण अर्थतंत्र के आकार विस्तार करबा में सहयोग पहुँचाओत से बतौलनि अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल सरकार देश में सुशासन कायम करबाक लेल प्रतिबद्ध भ कर निरंतर लागल बतौलनि अछि। आइ प्रतिनिधि सभा बैठक में सरकार के 100 दिन के प्रगति के संबंध में बैठक के जानकारी करबैत ओ ई दावी कयलनि अछि। मंत्री पोखरेल सरकार शासकीय सुधार के प्रयास के थप संस्थागत परिष्कृत आ परिणाममुखी बनबैत आगू बढ़ौने जिक्र सेहो कयलनि। सरकार 100 दिन भीतर भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता मतमित व्ययता योग्य के आधार पर नियुक्ति आ डिजिटल सेवा प्रवाह में ठोस परिणाम देखवासन काज कने मंत्री पोखरेल के कहब छन्हि। मंत्री पोखरेल सरकार डिजिटल सेवा प्रवाह में सेहो ठोस कदम उठौने बतौलनि अछि।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ नेपाल अन्तर्देशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटी मार्फत ऊर्जा व्यापारक लेल पड़ोसी राष्ट्रसँग समन्वय सहकार्य करैत आबि रहल बतौलनि अछि। आइ भेल इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया रिजनल लन्च इभेन्टमे ओ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत नेपालके भारत आ बंगलादेशमे विद्युत व्यापार करैत आबि रहल बतौलनि। मन्त्री श्रेष्ठ नेपाल सन् 2035 धरि 28,500 मेगावाट क्षमताके जल विद्युत आयोजना सम्पन्न कऽ पड़ोसी देशमे नवीकरण ऊर्जाके स्रोतके रूपमे रहल जल विद्युत उत्पादित विद्युत निर्यात करवाला लक्ष्य सहित काज भऽ रहल बताने छलथि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी बाली लगाव वाला मुख्य समय में किसान के समय में रासायनिक खाद भेटे उद्देश्य के संग मंत्रालय हर संभव प्रयासरत रहल बतौलने छे। मंत्रालय के नेतृत्व संभालने 100 दिन पूरा भेल अवसर पर आई आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री चौधरी खाद के आपूर्ति वितरण प्रणाली किसान की शिकायत तथा देश भर से प्राप्त सूचना के प्रत्यक्ष निगरानी भऽ रहल जानकारी दिलन। आर्थिक वर्ष 2082-83 में चैत से अखन धरि कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड 53,716.45 मेट्रिक टन तथा साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से 35,478.10 मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक खाद बिक्री वितरण कयने मंत्री चौधरी जानकारी दिलन। संगे दुनू कंपनी से गत चैत एम्हर 3,50,000 मेट्रिक टन G2G के 50,000 मेट्रिक टन से हो लगा कर बोलपत्र आह्वान कैल गेल। आबे वाला सावन महीना भीतर थप 2,10,000 मेट्रिक टन रासायनिक खाद आयात क किसान के थप वितरण करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ायल गेल ओ बतौलनि छ। संसदीय सुनवाई समिति के बैठक से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के पद में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित 3 गोटे के संसदीय सुनवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कैलक। सिंह दरबार में आई बैसल समिति के बैठक में समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित 3 गोटे के संबंध में उजूरी संकलन संबंधी सूचना सरकारी संचार माध्यम आ संघीय संसद सचिवालय के विद्युतीय माध्यम मार्फत आधिकारिक रूप में प्रकाशन तथा प्रसारण करवाक निर्णय भेल बतौलन। सभापति श्रेष्ठ प्रस्तावित उम्मीदवार के संबंध में जनता से उजूरी तथा सुझाव आह्वान करवा काल से 10 दिन के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कैल जवाक तथा प्राप्त उजूरी के आधार पर सुनवाई के कार्यतालिका प्रक्रिया आवश्यक मापदंड तैयार कैल जवाक जानकारी दिलन। बैठक में सांसद सब प्रस्तावित उम्मीदवार के संबंध में पर्याप्त जानकारी सहित जनता के आश्वस्त बनेबा सन प्रश्न जिज्ञासा उजूरी के आधार पर पारदर्शी तथा प्रभावकारी ढंग से सुनवाई प्रक्रिया आगू बढ़ायल जवाक चाही पर जोर दिलन। गंडकी प्रदेश सभा औषधि जन्य तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिए गांजा खेती के नियमन आ व्यवस्थापन कर बनल विधेयक 2083 पारित कलक। प्रदेश सभा के 10वें अधिवेशन के आई भेल 21वें बैठक में सभामुख कृष्ण प्रसाद धीताल विधेयक सर्वसम्मत से पारित भेल घोषणा कलन। आब गंडकी प्रदेश में दवाई आ औद्योगिक सामग्री उत्पादन के लिए गांजा खेती कर के बाट खुजल। प्रदेश सभा के अर्थ तथा विकास समिति सभापति भोजराज आर्याल बुध दिन ए विधेयक के प्रतिवेदन सभा में पेश कने छलथ। आजुक बैठक में विधेयक विचार विमर्श के लिए उद्योग तथा पर्यटन मंत्री यशोदा रिमाल प्रस्ताव रखने चले। विचार विमर्श में प्रदेश सभा सदस्य सब अशोक श्रेष्ठ गणेश मान गुरुंग सुशीला सिमखड़ा आ बिंदु पौड़िल धारणा रखने चले। मध्य प्रदेश के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री मनोज सिंह निरक्षरता के कारण मध्य प्रदेश के मात नीचा भेल बतौलनि। सिराहा के लहान नगर पालिका के बुध दिन साक्षर पालिका घोषणा करबा कार्यक्रम में संबोधन करैत मध्य प्रदेश के 8 जिला अखनो साक्षर घोषणा होब नहीं सकला से राष्ट्रीय मंच सब में प्रदेश के प्रतिनिधित्व करा पर गौरव कर नहीं सकल अवस्था रहल बतौलनि। नेपाल के सबसे बड़का वार्ड रहल लहान नगर पालिका साक्षर पालिका घोषणा कर सिराहा के बाकी 16 स्थानीय तक से साक्षर घोषणा कर में प्रेरित कने हुनकर कहब छलन। ओ अखन धरि मध्य प्रदेश के 136 स्थानीय त मध्य 14 मात्र साक्षर पालिका घोषणा भेल जानकारी दैत सिराहा के 17 पालिका के साक्षर घोषणा करक लेल स्वयं विशेष रूप में प्रयासरत रहल बतौने छलथि। सरकार 12 वर्ष से विभिन्न कारण से रोकल गेल ढलकेवर हेठौड़ा 4 केवी प्रसारण लाइन निर्माण के अवरोध हटौलक। बुध दिन के मंत्रिपरिषद के निर्णय संगे आयोजना के मकवानपुर खंड में वन क्षेत्र प्रयोग कर के अनुमति प्राप्त भेल। मंत्रिपरिषद बैठक से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के वन ऐन 2076 के दफा 42,910 बमोजिम मकवानपुर के हेठौड़ा 15 स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया 2 स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अंतर्गत के राष्ट्रीय वन के 2-2 हेक्टेयर जमीन प्रयोग कर स्वीकृति देने। संगे अ क्षेत्र में रहल विभिन्न प्रजाति के 1,292 गाछ हटाव लेल स्वीकृति प्रदान कलक। राहदानी विभाग राहदानी सेवा के नया प्रणाली में रूपांतरण माइग्रेशन करबाक कारण आई से 2 दिन राहदानी सेवा बंद होबाक जनौलक। बुध दिन जारी कने सूचना हिसाबे
अखन संचालन में रहल प्रणाली से नया प्रणाली में सेवा हस्तांतरण करबाक कारण यह अखाड़ 25 आ 26 गते तदनुसार जुलाई 9 आ 10 तारीख के राजधानी संबंधी सेवा बंद रहत। इससे पहले विभाग अखाड़ 19 गते सार्वजनिक सूचना जारी करित प्रणाली परिवर्तनक कारण उक्त 2 दिन सेवा अवरुद्ध हेबाक जानकारी करौने छल। यद्यपि राजधानी संबंधी अन्य सेवा बंद भेलाक बादो विभाग तैयार भ चुकल राजधानी वितरण करत। मोबाइल में राजधानी संकलन के लिए SMS मार्फत प्राप्त केने सेवाग्राही विभाग में संपर्क कर अपन राजधानी संकलन कर सकबाक विभाग जनौलक। आ मौसम समाचार। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा आई देश के अधिकांश स्थान में बदली रहबाक तथा विभिन्न प्रदेशक पहाड़ी हिमालय तराई में मेघगर्जन ठनका सहित वर्षा के संभावना रहल जनौलक। आई राति सेहो देशक अधिकांश स्थान में बदली रहत। कोसी प्रदेश तथा बागमती आ गंडकी प्रदेशक हिमालय पहाड़ी विभागक अधिकांश स्थान में तथा लुम्बिनी कर्णालय सुदूर पश्चिम प्रदेशक हिमालय पहाड़ी भेगक किछ स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना रहल। तहिना मध्य प्रदेश तथा बागमती गंडकी लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई के किछ स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल। मध्य प्रदेश सहित कोसी बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेशक पहाड़ी तथा तराई के एक दो स्थान में भारी वर्षा होबाक कारण सतर्कता अपनेबाक लेल महाशाखा अनुरोध कयलक। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 सहित 6 विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है। कृषि मंत्री गीता चौधरी का कथन और बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच पर सख्ती करेगा यूरोपीय संघ। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की दूसरी बैठक ने राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित होकर संदेश सहित प्राप्त 4 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक ने सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083, संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्री निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083 तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल आइन में संशोधन करने संबंधी विधेयक 2083 को स्वीकृत किया। नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करने संबंधी विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री सोविता गौतम द्वारा प्रस्तुत विचार किया जाए प्रस्ताव को सदन के बहुमत से स्वीकृति मिलने की घोषणा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने की। इससे पहले विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री गौतम ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लाने के उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया है। मंत्री गौतम ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने तथा अनुसंधान प्रणाली को निष्पक्ष स्वतंत्र और अधिक सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लाना उपयुक्त होगा। सभामुख अर्याल ने जानकारी दी कि नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करने संबंधी विधेयक 2083 पर संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सांसद प्रतिनिधि सभा की विधेयक शाखा में अपने संशोधन दर्ज करा सकते हैं। इसी बैठक ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून मंत्री सोविता गौतम ने राष्ट्रीय सेवा दल विधेयक 2083 सदन में प्रस्तुत किया। मंत्री गौतम ने कहा कि ये विधेयक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में देशभक्ति, जनसेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले सभामुख कार्यालय ने बताया कि विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति संबंधित प्रस्ताव पर किसी भी सदस्य की ओर से विरोध की सूचना प्राप्त नहीं हुई। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से मंत्री गौतम ने महान्यायाधिवक्ता की वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की 25वीं वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत की। इसी बीच प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सीमा संबंधी रिपोर्ट टिप्पणी को वापस लेने की मांग करते हुए एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद सभामुख कार्यालय ने उनसे विरोध का तरीका बदलने का आग्रह करते हुए कहा कि वे लंबे समय से एक ही विषय पर ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक सदस्य अपनी बात रखे और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने दी जाए। विपक्षी दल के सांसद 17 जेठ को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा संसद में दिए गए सीमा संबंधी वक्तव्य को संशोधित करने की मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत में सांसदों ने देश के समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि सरकार प्रशासनिक सुधार के प्रयासों को और अधिक संस्थागत, परिष्कृत तथा परिणाम उन्मुख बनाते हुए नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से सुशासन का अनुभव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के 100 दिनों में किए गए प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और प्रारंभिक परिणामों की जानकारी देते हुए मंत्री पोखरेल ने कहा कि इस अवधि में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यता आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा वितरण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सरकार के प्रवक्ता पोखरेल ने बताया कि संघीय मामलों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई है और इससे राज्य कोष में प्रतिवर्ष लगभग 20 अरब नेपाली रुपए की बचत होने का अनुमान भी है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्री निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 सहित 6 विधेयकों को पारित किया है। राष्ट्रीय सभा ने सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल आयन में संशोधन करने संबंधी विधेयक 2083, आर्थिक विधेयक 2083 तथा राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया। इसी तरह प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 को आज की राष्ट्रीय सभा की बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। राष्ट्रीय सभा की बैठक ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 को भी सर्वसम्मति से पारित किया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज निर्माण क्षेत्र के समस्याओं, इसके संवर्धन, भौतिक संरचना विकास, निवेश माहौल तथा आर्थिक सुधार से जुड़े विषय पर निर्माण व्यवसायियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि निर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सकारात्मक और प्रतिबद्ध है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने मंत्रालय और उसके अधीन स्थल निकायों को कानून के विपरीत संविदा करार सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रबंधन को विधि सम्मत, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यकता की स्पष्ट पहचान, उसके औचित्य की पुष्टि तथा सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि अतीत में विभिन्न निकायों द्वारा कानून के विपरीत बड़ी संख्या में करार कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के कारण अब संस्थानों के समग्र प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा है कि किसानों को समय पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है। आज मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री चौधरी ने बताया कि मुख्य बुआई के मौसम में उर्वरक की आपूर्ति, वितरण व्यवस्था, किसानों की शिकायतों तथा देश भर से प्राप्त सूचनाओं की प्रत्यक्ष निगरानी की जा रही है और समस्याओं के शीघ्र समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभामुख डोल प्रसाद अरियाल से नेपाल के लिए भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शिष्टाचार भेंट की। आज सिंहदरबार में हुई मुलाकात के दौरान सभामुख अरियाल ने कहा कि उच्च स्तरीय दौरों के आदान प्रदान से नेपाल और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन, रेल तथा बस सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी के विस्तार से दोनों देशों के संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने भविष्य में अधिक उड़ानों तथा रेल और बस मार्गों के विस्तार की आशा भी व्यक्त की। भेंट के दौरान राजदूत श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ बच्चों को किशोरों की सोशल मीडिया तक पहुंच को और अधिक सुरक्षित तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में नए नियम तैयार कर रहा है। प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य नाबालिगों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, साइबर बुलिंग, लत पैदा करने वाले प्लेटफॉर्म डिजाइन और गोपनीयता संबंधी जोखिमों से बचाना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संकेत दिया है कि ईयू आने वाले महीनों में नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर अधिक कड़े नियमों का प्रस्ताव ला सकता है। कई सदस्य देश 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर समान नियम लागू करने के पक्ष में हैं ताकि पूरे यूरोप में एक रूप नीति बनाई जा सके। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 सहित 6 विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं, कृषि मंत्री गीता चौधरी का कथन, और बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर सख्ती करेगा ईयू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
6: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
7: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
5: *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
8: झन्डु आयुर्वेद,
9: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झन्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
8: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
9: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
8: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
9: झन्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।

कृष्ण का गोविंद राधे, स्मरण श्रवण अरु कीर्तन बता दे। राधा गोविंद गीत। जीवात्मा को वास्तविक लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को एकमात्र उपाय श्री कृष्ण भक्ति ने हो, जस अंतर्गत श्रवण कीर्तन एवं स्मरण भक्ति प्रमुख हुन। राधा गोविंद गीत को यो संदेश मूलक दोहा का साथे कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। श्री राधा माधव समिति नेपाल श्यामा श्याम धाम टिमी द्वारा संचालित यो कार्यक्रम रेडियो नेपाल को राष्ट्रीय प्रसारण अंतर्गत यहाँहरूले हरेक दिन बिहान ठीक 5:25 बजेदेखि दैनिक रूप में सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ सुमधुर पद गायनबाट। प्रस्तुत पद जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा